तेरा असम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। लुकिए मेरा असम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना बड़ी फूल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना बड़ी फूल है। अरे शादी

अरे ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तुम्हें गुस्से में खून मेरा कांटा दो, सिक्सर रेंडर हूँ।

0: लेकिन मैं सारे काम काज करूँ, तेरे गुस्से लेके ईगो का मसाज करूँ, तेरा जुर्म कल खोया गलती है तेरी और थाने जाके FIR में लॉज करूँ। जानती है कि मैं तुझे पैसे लाऊं, ये जानती है तेरी आत्मा को मिलती है शांति है, मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूँ मैं तेरा झूमका।
1: अरे बहन के इतना जेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झूमका गिरा रे।
2: झूमका
1: झूमका गिरा
2: झूमका।

0: 撑杆。
1: 耶耶耶耶！
2: 都卖力！
3: 别别别！
4: 臭！
2: 都老弟！
4: 快点卖力！
2: 哎，老弟！
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन
5: शेख ये बात ठीक है।

रखो ना तुझ कोई भी शंका, अपने प्यार का बजा दो लंका, तेरे मेरे बीच में तो कोई भी आया उसके लगा दो लंका, छोड़ छाड़ के दुनियादारी बस तेरे बीच में पड़ गया मैं, सपनों में तो ऑलरेडी दौड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं, मुझको भी

0: कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स भी दे दो इसको, इसको गाड़ी चाहिए लंबी, म्यूजिक चाहिए
1: लाउड,
0: ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता ढंका
1: क्राउड,
0: लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कहती तो है स्टूडेंट है बट आई डाउट।

0: सोमे को आनी बातलो बातलो सुना मिला ना आनी बातलो बातलो भाई
1: होइन हो तल छोइ बोलै भन्दा हात अलि छिटो छिटो चलाउ है।